0: शुरू में मेरे ख़ानदान वालों ने गाना गाना मेरा अच्छा नहीं समझा, लेकिन जब मेरी शोहरत हुई, खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे लोगों ने अच्छा समझा तो वो खुश हुए। अब मैं उनसे मिलती हूँ, वो भी मुझे मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं।
1: United we stand, divided we fall. We must universally combine through one race, one tongue, one blood.